0: ये हिचल साफी जेनेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम स्टार्ट अविनेश हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के 704 एपिसोड में मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आप हमें सुन रहे हो फ्रीक्वेंसी 96.9 एफएम और वी आर सिचुएटेड इन प्लेन्स मीडिया स्टूडियो इन मद्रास स्ट्रीट जी हाँ जिस तरह एवरी वीक हम आ जाते हैं आपके साथ में सरडे है आशा है कि आप एंजॉय कर रहे हो और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास एक गेस्ट है जो जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वो है मोनिल जी जिसको काफ़ी बार आपने अपने जलसा पे देखा होगा और साथ साथ में अर्चना जी भी हमारे साथ में शामिल हो चुके हैं और आज का जो विषय रहेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है फिजी गिरमिट कैंटरबरी जो दिवस मनाई जा रही है दिस इज दी 147th गिरमिट जो रिमेम्बरेंस है और ये जो क्राइस्टचर्च में मनाई जा रही है उसकी जो पूरी जानकारी आप इस एपिसोड में आज हम आपको सुनाने वाले हैं और साथ साथ में आप जाइए ना फ्रीक्वेंसी में रहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे बाद में हम एक जो हमने रिकॉर्डिंग की थी इंटरव्यू ली थी अभी हाल ही में एमपी हेमेश कैंबल वो भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन गेट मोर ऑफ योर कैंडिडेट्स बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इलेक्शन ईयर तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ शाहिल जो पेनलिंग करेंगे और शिवनील जी भी आ चुके हैं स्टूडियो में ही इज गोइंग टू हेल्प अस विद वीडियोग्राफी थैंक यू बोथ ऑफ यू और साहिल के पास एक सॉन्ग भी है जो प्ले करेगा एंड दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन फाइंड बिकॉज आज के एपिसोड में मोस्ट लाइकली एक ही सॉन्ग रहेगा तो साहिल ने काफी परिश्रम किया है और ही इज कमिंग अप विद द बेस्ट सॉन्ग एवर जो आप आज आप सुनोगे और साथ साथ में साहिल इज ऑल्सो कम प्रिपेयर्ड विद जैसे हमेशा की तरह खेल कूद की दुनिया के कुछ समाचार लेकर आ जाते हैं इज प्रीटी एक्साइटेड और वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये जो एपिसोड आज खत्म हो ताकि वो घर पहुंच सके क्योंकि उसको कुछ एक एक्चुअली गेम भी देखना है तो बताइए साहिल
1: एक्चुअली फाइनल है चीफ्स और हरिकंस के
0: जी हाँ सो आपने आपका जो $3,000 बेट करना था किस पे किया है
1: अभी किसी पे नहीं किया बोथ टीम्स आर लुकिंग वेरी गुड कोई भी जीत सकता है
0: कुछ भी हो सकता है
1: इस गेम में हरिकंस आर फेवरेट थोड़ा समझे
0: फेवरेट्स इन चीफ्स मस्ट विन क्योंकि दे हैव बीन मिसिंग
1: क्वाइट अ लॉट इन अ रो ना
0: सो दिस टाइम दे आर देयर एंड एक्चुअली चीफ्स आफ्टर बीटिंग क्रुसेडर्स आई थिंक उनका जो मोरल और बूस्ट हो चुका है सो दे आर रियली दे आर विल सी व्हाट हैपेंस और जस्ट क्विकली फीफा में भी आज क्या हो रहा है क्या मालूम है कौन सा गेम कल सुबह हम देख सकते हैं
1: काफी गेम हुए है काफी गेम बिहान भी हुई इट्स ऑल गोइंग गुड टू मेनी टू लिस्ट
0: Yeah.
1: I would say probably go online and have a look and or actually
0: Any
1: watch
0: team
1: the game.
0: Any team
1: be
0: favorite?
1: Actually, favorite teams are underdogs, look at it. Because they are actually performing very well.
0: Do you want to be,
1: well.
0: Become the octopus and predict?
1: No. It's very hard to predict this one. Because jo an acha team jo an favorites hai they are Upsets. Losing or they Upsets. Are drawing and jo an team ka chahiye haar ho they are winning.
0: Maybe it's a warming up.
1: Could be.
0: Ki second game bhi isi tarah ja raha hai.
1: Second game be second round start hua I think it started today
0: but I think it's pretty good we actually mujhe acha lagta hai ki main aise se naam sun raha hu jo mujhe pata hi nahi tha wo sab exist karte hain wo sab countries
1: new countries
0: yeah
1: and even is bar fifa mein unhone naya rules laye so which is pretty good and interesting to see aaj ek red card mila just for covering their face
0: okay to so, sharma nahi sakte
1: Nah. like literally you cannot cover your face in hats and t-shirts especially when play stops
0: yeah I mean the few things are happening I think this time FIFA has actually done a few rules काफी कुछ changes किया but I think overall अगर if I compare the last one to this one I find more interesting मुझे ऐसा लगता है कि it's going at a good pace उस तरह breakdowns नहीं होता
1: their teams है और their games है हाँ actually those rules were for that कि fast game time wastage नहीं है उस तरह so they put it penalties around those
0: yeah which is good I mean it's working I think it is working और मुझे अच्छा भी लग रहा है because otherwise while I was watching jo breakdowns hota tha jo bahut delays hota tha interest mai lose kar deta tha whereas jo last jo women suka hua tha that was very interesting mujhe wo kafi acha laga because that had less kind of stoppage time but this time it is pretty good so it's happening quite good at this time of course we have Mexico Canada and US
1: hosting it
0: which is quite nice to koi baat nahi iske vishay mein fir hum aage chal ke baat karenge but going back to today's topic which is 147 jaise

0: मैंने बोला था गिरमिट रिमेम्बरेंस, जिसके विषय में हम बात करेंगे और हमारे साथ शामिल हो चुके हैं मोनिल के प्रताप एंड अर्चना, जो इनकी पूरी जानकारी हमें देंगे. वी विल लेट साहिल प्ले हिज सॉन्ग. जैसे वो सॉन्ग खत्म होगा वी विल डिस्कस एंड गिव यू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जो दिवस या जो रिमेम्बरेंस नाइट हम कहेंगे मनाई जा रही है क्राइस्टचर्च में. और जो लोग हमें ज़्यादा करके फेसबुक में देखते हैं सो वी विल बी कमिंग ऑन लाइव एज वेल, ताकि आप हमें देख सको, मोनिल को देख सको एंड अर्चना एज वेल व्हेन वी आर to share the full information about this event that is coming up in July. Bahut dur nahi, I mean July to bas around the corner hai. It's happening on 4th of July at Templeton Community Center. To uske vishay mein bhi hum puri baat karenge. And of course jo log Fiji se jude hue hain, Fiji se aaye honge, then Girmit of course is not nothing new. Hum uske vishay mein kafi baar sune hain, but this time again we were just going to refresh what we know and then we were going to share more from Monil and Archana. To Sahil, your song.
1: पेपर के अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपाकर एमजी गाड़ी में रखी गई. और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका.

0: तुमने अपनी चांदी का इन्विटेशन भेजा भाई?
1: अरे साबा कौन ठाकुरा?
0: अब फिर भूल गया भाई, यो मरवाएगा भाई। अरे सरदार है और रामगढ़ का हैंडलेस ठाकुर।
1: वो ठाकुर उसकी शादी है? शादी कब है? कब है शादी?
0: सरदार इट इज टुमारो।
2: चाहे ठाकुर की शादी हो या गबर की, चाहे कुछ भी ओकेजन हो, बाल तो कटाना है, हैंडसम तो दिखना है, तो सिर्फ एक नाम याद रहे अपुन का चॉइस, नीर बाबा, बोले तो एनजेड फ्लेम्स बाबा, 190 वेरेकी रोड प्रिनवा स्टेज, नो अपॉइंटमेंट्स नेसेसरी। नीर बाबा इज एन एक्सपर्ट इन रेगुलर हेयर कट्स, फ्लैट टॉप, रेजर शेव, स्किन फाइट, सीजर कट्स, रेजर कट्स, चिल्ड्रन कट्स एंड बियर्ड ट्रिमिंग। उसका नंबर है 0271-127-3687 या तो फिर 0397-431-71। सुअर के बच्चों, नाम याद रहे एनजेड फ्लेम्स बाबा।
3: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with the

0: Insurance, and contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs, and contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs, and contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements, and contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons, and contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property, and contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city, and contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथियों को पुनः स्वागत करते हैं चलसाफी जी रेडियो के सेल लाइफ एपिसोड में। मैं हूँ प्रवीण रैक्टर विनेश, और जैसे मैंने पहले बोला था, हमारे साथ में साहिल जी जो हेल्प कर रहे हैं पैनलिंग, एंड साथ साथ में शिवनील बिहाइंड द कैमरा। अगर हम आप जुड़ रहे हो हमारे साथ फेसबुक लाइव पे, तो आपको भी स्वागत करेंगे। और हमने जैसे शुरू में मेंशन किया था, हमारे जो गेस्ट थे आज के लिए मोनिल प्रताप और अर्चना जी, दोनों हमारे स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। और जैसे हमने बोला था, आज हमारा जो चर्चा है गिरमिट, जिसे आप पोस्टर में देख सकते हो, द पोस्टर इज हियर व्हिच इज द गिरविट नाइट, हम कहेंगे होने जा रहा है क्रशियश में, जिसकी फुल इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय मोनिल एंड अर्चना ड्यूरिंग दिस वीडियो इंटरव्यू। तो चलो मोनिल जी और अर्चना, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। एंड अर्चना जी, आप बताइए कि आज आपका दिन कैसा बीता?
1: आज तो बहुत गर्मी थी यहाँ पर, 21 डिग्रीज, और हवा ऐसी चल रही है, सब कुछ उड़ रहा है
0: जी,
1: तो बिजी भी था।
0: जो लोग शायद हमसे फिजी से सुन रहे हैं, उनको बोल रहे हैं 21 डिग्रीज और काफी गर्मी है।
1: बहुत गर्मी थी पिछले कुछ दिन से, फ्रॉस्ट हो रही थी, तो अचानक से जब 21 डिग्री,
0: हमारे लिए गर्मी है।
1: यस
0: जी, डेफिनेटली। मोनिल जी बताइए, यू आर नॉर्मली काफी आप व्यस्त रहते हो, काफी बिजी रहते हो, तो आज आपने कुछ टाइम ऑफ लिया कि आज भी आपका दौड़ भाग चल रहा था?
2: मेरा भी तो भाग फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबके, एंड थैंक यू जलसा जी और जलसा एफजी रेडियो फॉर हैविंग अस। वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी इन योर शो। आज के दिन बहुत बिजी था, सैटरडे या संडे के मेरा शॉपिंग होता है पैक एंड सेव में, तो मैं और मेरा वाइफ किया था पैक एंड सेव, और एक आधा और करके काम किया।
0: बट यू कैन ऑल्सो देयर अदर शॉप्स एज वेल, आप वहाँ भी जा सकते हो।
2: हाँ,
0: दैट्स गुड ऑन यू। तो चलो हम चलते हैं इसे डायरेक्टली ऑन दिस, जो इवेंट आ रहा है गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट, उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत समय तो नहीं रहेगा। वी हैव अ रिकॉर्डिंग टू प्ले, जिसे हमने मेंशन किया था फ्रीक्वेंसी में, विच इज एन इंटरव्यू वी हैड विद एमपी हैमिश कैम्बल, जो आलम का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी है। सो वी विल ट्राई टू प्ले दैट आफ्टर आवर वीडियो इंटरव्यू विद मोनिल एंड अर्चना। तो गोइंग ऑन टू दिस इवेंट, तो अर्चना जी आप बताइए, व्हेन वेयर कहाँ पे हो रहा है और कब शुरू हो रहा है ये प्रोग्राम और कब खत्म होगा?
1: तो ये हो रहा है शनिवार 4th जुलाई शाम को 7 बजे रोलस्टन कम्युनिटी सेंटर पर, और पूरी फैमिली के लिए टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर, और इट्स फॉर द होल फैमिली, बच्चे हो, घर के बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए है। हमारे पूर्वजों के बारे में कहानियाँ होगी, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है, स्पीचेस है, अवार्ड्स है, क्विजेस है, उसके बाद अवार्ड्स है, गिव अवेज है, तो पूरी फैमिली के लिए है।
0: जी हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस इवेंट जो भी हो रहा है, इट हैज हैपेंड बिफोर ना, आप लोगों ने पहले भी ऑर्गेनाइज किया था?
2: हाँ, हम लोग बट 4 ईयर्स से करता है हम, लेकिन इस साल के इवेंट कुछ खास डिफरेंस है हम लोग के, एक आध हम लोग नया प्रोग्राम करता है, नया परफॉर्मेंसेस है, और एक सरप्राइज भी है सबके लिए, तो वो चीज़ हम लोग का नया है इस साल के लिए।
0: ऐसे और जब गिरमिट के बात किया जाए, मोनिल, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, यू आर न्यूजीलैंड बोर्न?
2: हम न्यूजीलैंड बोर्न है, न्यूजीलैंड बोर्न है, सर ये वेलिंगटन बोर्न, सर या टू सपोर्ट द हरिकेन समटाइम्स,
0: लेकिन समटाइम्स नॉट टुनाइट,
2: नॉट बट टुनाइट आई विल।
0: ओके,
3: न्यूजीलैंड यहां पे बैठी से तब सपोर्ट करें ना, बोले किस कह रहा, दिल से हरिकेन को सपोर्ट करें, बट रोक जगह पे बैठी से
0: आधा वैसे हमारे साथ में रहता है, ही जस्ट कीप्स ऑन सेइंग गो क्रूसेडर्स।
2: तो हम मांगता है, हम लोग सबके इन्वाइट करता है, खाली फिजी इंडियंस के नहीं, लेकिन सबको इनके पूरा क्राइस्टचर्च के पूरा कैंटरबरी के आइए, और हम लोग के संगे ये रिमेम्बरेंस इवेंट के साथ दिए। काफी दिन हो गया, 147 ईयर्स हो गया है सिंस गिरमिट हैपेंड बैक इन 1879, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम अगो, बट वी as our people we should appreciate the sacrifices and the hardship that our people went through back then. और हम अभी हाल ही हम अपने जान पाए कि हम लोग कहाँ से आया है.

0: अब बोला था अभी कि हम यहाँ पैदा भी आए और हम सर भी बोले थे तुम कहाँ से. हम बोला कि हम तो यही से लिखे, हमारे पेरेंट्स फीजी के. और पीपल बोले थे तो हमने जानता कि फीजी में इंडियंस आए. लेकिन अब हम लोग सकता है जाने और हम सकता है समझे कि कैसे इंडियन आइन रेफ्यूजी में ना. सो 60,000 पीपल आइन रहा बोट लोंग में फ्रॉम अबाउट 1879 टू अबाउट फ्रॉम अबाउट 40 ईयर्स फ्रॉम दियर एंड 87 शिप्स रहा. सो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल केम दियर एंड मेनी ऑफ देम वर टोल्ड कि अच्छा तुम्हें लाइफ मिली और अच्छा लाइफ मिली वहाँ से. एंड दे केम दियर एंड दे वर्क्ड एज लेबरर्स एंड वर्क्ड इन शुगर केन फील्ड्स एंड अदर अदर जॉब्स दियर. तो उन लोग के कारण से हम लोग के फीजी है जैसे अभी है. और एंड देन वी लुक दैट्स व्हाट वी होल्डिंग दिस रिमेम्बरेंस इवेंट कि हम लोग के संगे आइए और हम लोग याद करिए उन लोग के.
1: जी और अर्जन जी आप बताइए कि व्हेन वी टॉक अबाउट गिरमिट ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ हमारा जो वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दोज टाइम हाउ दे वुड हैव स्ट्रगल जो भी कुछ स्ट्रगल हुआ होगा. हाउ डू यू रिलेट टू योरसेल्फ लाइक डू यू हैव लाइक इन फैमिली मेंबर्स बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू आर बोर्न इन फिजी.
2: I was born
1: so obviously
2: in
1: you would have heard stories in your school days या maybe relatives या किसी ने कुछ शेयर किया होगा.
2: Yes, तो फिजी में मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी. मेरे मम्मी के आजा बोलते हैं, तो आजा थे जो गिरमिट के समय आए थे. और मेरे पापा की फैमिली को फिजी में रहे. आई थिंक मैं 8th जनरेशन हूँ. तो हमने टिकट्स हमें मिली जो इंडिया से आए थे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कहाँ
1: exactly,
2: से हुए.
1: yeah.
2: हाँ, तो फिर हमें हम है इंडिया के ये पता है, लेकिन कहाँ से है और कितने दिनों से फिजी में रह रहे ये अभी तक पता ही नहीं चला. तो ये अपनी कहानी है कि हम बोलते हैं हम इंडियंस हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से किसी को पता ही नहीं है. बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम कहाँ कहाँ से आए.
1: जी हाँ, और वी वर टॉकिंग टू माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया अनूप जी, उसको भी हम याद करना चाहेंगे इस शो में बिकॉज वी हैड टू इंटरव्यूज विद हिम अबाउट गिरमिट डे. नॉर्मली हम फिजी लोगों से बात करते हैं बट देयर वाज क्वाइट डिफरेंट एंड ही गेव अ स्टोरी फ्रॉम इंडियन लाइक इंडिया के पर्सपेक्टिव से उन्होंने वो स्टोरी से लिया. और ही एक्चुअली वेंट बैक टू हिज विलेज एंड ही ट्राइड टू फिगर आउट और उसने जाकर एक्चुअली ढूंढा भी कहाँ पे सब रिकॉर्ड्स वगैरह रखा हुआ है. सो इफ यू वांट रीड इज ऑन आवर जलसा फिजी रेडियो यूट्यूब में आपको मिलेगा एंड देन दिस काइंड ऑफ टू वीडियोस है. अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज हियर बट दोज आर द स्टोरीज जो आई एम गेसिंग दिस इज काइंड ऑफ टॉक जो आप सुनोगे ऑन दैट गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट हमें सुनने को मिलेगा बिकॉज आई एम गेसिंग देर बी अ फ्यू पीपल जो शेयर करेंगे अपनी स्टोरीज हमारे साथ में. एंड जैसे मोनिल ने शुरू में मेंशन किया है अर्चना ने कि देर इज गोइंग टू बी सम परफॉर्मेंसेज एज वेल एंड अदर थिंग्स on the night. This starts from 7 p.m. so I'm guessing it might be like 3 hours or 4 hours ka rahega.
2: 2 ghante ka program hai aur fir hum sab ke liye socializing gana gaane wale log hai to hame entertainment hoti rahegi. Meri favorite hai exhibition rahegi jisme logo ko jaake opportunity rahegi dekhne ke liye ki kya use kiya ja raha tha us dino mein. तो ये हमारी पहली बार है जो हम यू नो आर्टिफैक्ट डिस्प्ले करेंगे, लेकिन होपफुली इसके बाद आज के बाद लोगों को पता रहे कि ऐसा होने वाला है. और अगर किसी के पास कुछ ऐसा हो जो वो शेयर करना चाहते हैं हम उस दिन उस रात को डिस्प्ले कर सकते हैं. तो इस डिस्प्ले को एग्जीबिशन को देखने में समय लग सकता है.
1: जी हाँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स शायद गिरमिट डेज में लोग इस्तेमाल करे होंगे.
2: यस,
1: मे बी जो बड़ा वाला प्याला होता है चाय पीने वाला.
2: हाँ, अभी तक मिला नहीं है, अगर आपके पास हो तो जरूर बताना.
1: सर आते हैं तो यू हैव अ बिग प्याला
2: नंगोना वाला.
1: अभी नहीं, कुछ जगह फोड़ दिया.
3: I don't know what happened Fiji pe definitely raha jo bada la chini la bole jana wala raha yahan pe. I don't think yahan pe raha
1: because I know my mere aaji ke paas tha and she was the only one jo bada wala piala use karegi whereas we were kind of waqt ke sath mein maybe we started minimizing jaise abhi agar ghar lete ho na to size reduce ho raha hai compact ho raha hai to maybe hamara jo piala ke size pe reduce hote chala gaya but jo purane log the hamare buzurg the they kept using their big piala so that's how I remember jo bada piala मैंने उसके ही साथ में देखा था. बट देन ऑफ कोर्स एज वी ग्रू अप देन वी हेड मोर एंड मोर स्टोरीज तब पता चल रहा है कि देयर आर मेनी थिंग्स. शायद हमने उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया बट नाउ वी डू थिंक अबाउट दैट. फ्लैशबैक होता है व्हेन वी थिंक कि अगर हमें पता होता देन ऑब्वियसली वी वुड हैव ट्राई टू प्रिजर्व दोस थिंग्स. हमने शायद उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग जब हम मोरल से की बात सुनते हैं कि ही दो ही इज बोर्न इन हियर बट ही इज नाउ getting that interest. So I think that could be one of the other motives ki jo log abhi bacche abhi ke bacche hain then they might

0: get a bit motivated. Yeah, they will like history is there. Like aisa nahi ki sirf Fiji history ki koi bhi history aap le lo, we do get excited when we talk about history, and this is a good way of actually telling the stories and wo jo flashback hota, and so that people can relate ki how it all happened in those days. And Asana ji, you were wanting to add something else?
1: Well, मैं तो बस बोल रही थी ये जो चीजें हैं इसमें बस हमारी बस चीजें नहीं है इसमें इतिहास है इसमें हमारी बहुत सारी कहानियां हैं बहुत सारी यादें हैं बहुत सारी दर्द भी इसमें जुड़ा हुआ है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग अगर किसी के पास कुछ हो तो वो क्या क्या हम डिस्प्ले कर सकते हैं अभी मोनिल ने सिक्योर किया है एक पुरानी सिंगर वाली सिविंग मशीन सो मोनिल ने मुझे फोटो जब भेजा तो मैंने मेरी मम्मी को भेजा और मेरी मम्मी के फेस पे उदासी टाइप छा गई कि अरे ये मेरे मम्मी के पास हुआ करता था फिर खराब हो गया तो ऐसे ऐसी चीजें आके आप डिस्कस कर सकते हैं अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे और ये कुछ चीजें ऐसी है जो वो लोग इंडिया से लेकर आए थे फिजी क्योंकि ये फिजी में तो ओरिजिन नहीं है इंडिया से आई और अभी तक संभाल के रखा गया है
0: हमारे घर पे था एक सिंगर मशीन काफी हेवी होता है और देयर इज नो लाइक इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं है
2: वो आपको
0: पैर से पेडल करना पड़ता है
2: अभी भी रखा है
0: अभी है
2: अभी भी है
0: बट इज इट वर्किंग लाइक डू पीपल यूज इट
2: नहीं probably jab hum Fiji mera last time wait time se dekha raha use hota
0: because
2: I mean it would still work but seizing ye utna din se use nahi pe
0: they just need someone who's good at maintaining matlab kuch work ki zarurat padti because we the one we had at home had similar issues so we had it fixed a few times fir I think at one stage you know my parents just gave it up
2: yes.
0: And so then of course they switched to
2: electric sewing machine like this se but ha regularly use karte raho to right hai but ek dafa rakha hai jata seize ho jaye
3: that's right
2: ha
3: I was quite lucky to find this one. तो आइए देखिए हम जो नाम मोहम्मद तरफ फोटो दिखा लेकिन फोटो नहीं दिखाएगा आइए इवेंट में देखिए और एक आध और हम लोग चीज हम लोग सिक्योर करा है दिखा के लिए तो और कोई के पास है कुछ रखे के जो उठा यूज होता रहा या हम यूज करता था या वेस्टर्न चीज है कुछ आइडियाज होगा प्लीज हम लोग का कॉन्टेक्ट करिए हम लोग डिटेल्स देंगे जज सचिव लोग के और प्लीज हम लोग के कॉन्टेक्ट करिए और हम लोग रिस्प्लाई करें
0: काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज नॉर्मली हम क्या करते हैं आते हैं शो देखते हैं वी हियर स्टोरीज एंड परफॉर्मेंसेस एंड ऑफ कोर्स बिफोर I say what mere dimag mein tha what about food because people will get hungry
3: food
1: aap khila rahe ho na sabko
0: ha main khila
3: raha khana hai hum log we have free food and free drinks to start with to vegetarian to meat hai to khana rahega food rahega drinks rahega aur free kahwa bhi rahega
0: okay
3: to sab cheez free hai free event bhi hai koi cost nahi hai koi cheez ke so yes take a part in the remembrance event aur sikhiye thoda gimit ke bare mein aur apne bachcho ke liye aiye aur involve kariye and so we can pass on the information and the history that we have and our free khana bhi hai so everyone is welcome not just Fiji Indians welcome hey the whole community is welcome come and see what our history is aur hum log kahan se aaye hain
0: जी हाँ बिल्कुल सो फिर से याद दिला दे आपको हम बात कर रहे हैं 147 तक गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट हम बोलेंगे विच इज हैपनिंग एट टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर 64 केक रोड टेम्पलटन जो होल है तो काफी पॉपुलर हो चुका है काफी इवेंट्स वहाँ हो रहा है एंड विच इज क्वाइट सेंट्रल एज वेल इफ यू आर लिविंग इन क्राइस्टचर्च रोल्सटन हिल्सवेल लिंकन इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सेंट्रल सो यू कैन जस्ट कम ओवर एंड be part of this program because I'm just guessing there'll be exhibitions rega that means you would get time to move around talk to other people socialize and as Anchana ne mentioned kiya there'll be some music to keep you entertained I think the idea behind this Girmit Day is just to tell the stories aur ye jara hamara jo history hai hum use rich history kahenge because we all know how it all happened I think ab to kafi is pe charcha ho chuki hai na I'm sure many of you would be aware how it all happened jise I'm only trying to explain 1879 when it all started usse pehle slavery chal raha tha which got abolished and then obviously they had to come up with some other bright idea ki how do you replace slavery with legally slavery but with legally so they came with this idea of indentured laborers in a legal way but end of the day it was a labor exploitation and that's when it had to end but एंड होते होते काफ़ी समय लगा लेकिन इन बिटवीन जो कुछ होना था वो हो चुका था our fathers ancestors were exploited they went through a lot of kind of hum kahenge kafi harsh conditions mein unhe kaam karna pada kafi zyada aur jis tarah wo aaye bhi

0: It was quite kind of tragic. अगर आप सुनोगे पढ़ोगे then you will feel आपको pain ज़रूर आप feel करोगे. लेकिन ये सब जब भी कुछ होता है जिसे हमारे जो life होती है it is mixed with happiness and sadness. हमारे साथ भी होते रहता है. अभी feel ऊपर जाएगा हम काफी निराशा जाते हैं and then feel comes down and you say oh yeah happy or economy अच्छी चल रही. So it always happens सभी के life में होता है. So the thing with Girmit is obviously we know the story. It's kind of a very sad story. Kafi struggle tha. Lekin on the other side, aap kya kuch seekh sakte ho? And that is the other thing that you can learn on that night. Ek cheez main bolunga ki the way they traveled in the boat, jis tarah boat mein sabhi log baithe aur aaye, many things washed away. जैसे अगर फिजी में आप किसी से बात करोगे दे डोंट नो कास्ट सिस्टम किया है लाइक व्हेन वी आर ग्रोइंग हमें नहीं पता था कास्ट सिस्टम क्या था बट इट वाज वेरी प्रेवलेंट इन मूवीज उस समय में अगर आप मूवीज देखोगे आईटीज में द कास्ट सिस्टम इज देयर मूवीज में दिखाया जा रहा था अभी शायद कम हो गया बट
1: बट
0: हमारे समय में हम फिजी में ग्रो अप हुए वी डिडंट नो लाइक हमारे फिजी में कुछ नहीं उस तरह था एवरीबॉडी स्टार्टेड ब्लेंडिंग बिकॉज ऑफ दैट जर्नी बिकॉज एवरीबॉडी वाज स्ट्रगलिंग इन अ सिमिलर वे सो दैट जस्ट वन एग्जांपल बट और भी बहुत एग्जांपल जब आप सुनोगे एंड बिफोर वी गो फॉर द आप लोग दोनों इफ यू वांट यू कैन जस्ट एक्नॉलेज योर स्पॉन्सर्स एज वेल बिकॉज आई थिंक उनका काफी योगदान होता है बिकॉज विदाउट देम देन वी कांट हैव दिस फंक्शन
2: ये 100% हम लोग स्पॉन्सर सपोर्टर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट रियल एस्टेट अ सुपीरियर सोलर इलेक्ट्रिकल सिटी साइंस हक्स प्रीमियम फिजी स्टाइल टेक अवे साइमंस इवेंट्स इंस्टॉलिंग गुरुकुल सिटी ड्राइविंग स्कूल लिमिटेड एक्स अर्चन जी देवी एंड फैमिली मोजिता ऑटोमोटिव धीरू ऑटोमोटिव मिसेस कालानंद और साथ हमारा एंड कमलेश ये हम लोग का स्पॉन्सर सपोर्टर्स रहा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स फॉर योर सपोर्ट एंड एंड विदाउट यू वी कुडंट होल्ड दिस इवेंट फॉर द कम्युनिटी सो दैट्स द एंड आल्सो आईड लाइक टू थैंक समवन एल्स as Jalsa Fiji Radio for allowing this opportunity और हम लोग के एक एमसी रह गया Uratka, and there is Mr. Jalsa himself, Mr. Vinesh Prakash Ji, hum log ke BMC rahega. To aaiye aur enjoy kariye uske bhi live performance. So that's another reason to come as well. Aur lastly, hum kehna hai bole ki ek recurring message tha hum log ke ek थिएटर लीड ऑर्गेनाइजर है वास्तव अंकल जो अभी नहीं रह सकते यहाँ पे बिकॉज ही इज गॉट अदर कमिटमेंट्स उसके वही भी मैसेज भी था कि आइए देखिए उसके स्ट्रगल और सर्वाइवल जो हम लोग के वो टाइम के पीपल के था एंड एक्नोलॉज एंड अप्रिशिएट देम एंड डू कम एंड रिमेंबर आवर एंसेस्टर्स सो वी कैन पास ऑन दिस हिस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन वी हैव
0: Thank you so much, Monil. Very good timing because now we have our 2 minutes here before we hand it back to Sahil for him to play his recording. So, Archana, jate jate, your invitation to people who are listening to us on frequency as well as Facebook Live.
3: Well, mere liye isme sabse exciting ek aur cheez ho rahi hai, jo ki hai, main bol rahi hu Girmit Parade ya Girmit Legacy Walk, jahan pe log us zamane ke kapde pehen ke aur agar kuch ho jo lekar wo chal sakte hai. उसको लेकर स्टेज पर आए और सबको दिखाए कि उनके पास आज ऐसा क्या है जो हमारे एंसेस्टर्स लेकर आए थे और हम उसको लेके काफी यू नो प्राउड फील कर रहे हैं आई एम एक्साइटेड टू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट
0: Thank you so much. So there was Archana and Monil, जिसे हम बात कर रहे थे and they were giving us full information about this 147th हम कहेंगे Girmit Remembrance Night. आपको आना है 64 करोड़ जिसे आप पोस्टर में देख सकते हो ये रहेगा टेम्पल्टन हॉल एट 64 रोड 7 PM से शुरू होता है आप आइए पूरा फैमिली के साथ में आइए बिकॉज इट्स अ फैमिली फ्रेंडली इवेंट दोस्तों के लाइए इट डजेंट मैटर बोलो चाहे फिजी इंडियन हो इंडियन हो या तो फिर कोई भी हो यू जस्ट ब्रिंग देम अलोंग और आई एम श्योर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड काफ़ी जो बातचीत है वो लोग समझ पाएंगे एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर और आई थिंक उस रात्रि में आपको ये भी पता चलेगा द रीज़न फॉर अस टेलिंग द स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन तो देयर इज अ लॉट टू लर्न बिकॉज जो स्ट्रगल या जिस तरह भी हमारे एंसेस्टर्स ने आए एंड व्हाट दे डिड एंड उसका जो परिणाम वी आर दोज पीपल बिकॉज अगर हमारी परवरिश उस तरह नहीं करते इफ दे हैडन डन द हार्ड वर्क देन मे बी वी वोंट बी सिटिंग ओवर देयर सो थैंक यू टू देम और चलो अब हमारा समय काफ़ी हो चुका है वी हैव टू कट दिस इंटरव्यू ओवर हियर एंड वी विल हैंड ओवर टू साहिल टू प्ले द इंटरव्यू दैट वी हैड विद एमपी हेमेश कैंपबेल जाते जाते जो लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव पे है आज सो सरडे एंजॉय कीजिए एंड लेट्स सी हरिकन और चिप्स के बीच में जो आज मुकाबला हो रहा है लेट द बेस्ट टीम विन